जगदाम मैया की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। काशी के कुतवाल काल भैरव महाराज की जय। धरती मैया की जय। अल्पना मैया की जय। भारत माता की जय। सारे जगत के देवी देवताओं की जय। हरा हरा महादेव नमः।